पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गुण विशेष विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री सवितृ सूर्य नारायण प्रीत्यर्थं च द्वादश

आचम्य प्राणायामं कृत्वा अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गुणविशेष विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुतिस्मृति पुराणोक्त फलप्राप्त्यर्थं श्री सवितृ सूर्य नारायण प्रीत्यर्थञ्च द्वादश नमस्काराख्यं कर्म करिष्ये।

आचम्य प्राणायामं कृत्वा अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गुण विशेष विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री सवितृ सूर्य नारायण प्रीत्यर्थं च द्वादश नमस्काराख्यं कर्म करिष्ये।

आचम्य प्राणायामं कृत्वा अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गुण विशेष विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री सवितृ सूर्य नारायण प्रीत्यर्थञ्च द्वादश नमस्काराख्यं कर्म करिष्ये।

आचम्य प्राणायामं कृत्वा अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गुणविशेष विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुतिस्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री सवित्रु सूर्य नारायण प्रीत्यर्थं च द्वादश नमस्काराख्यं कर्म करिष्ये।

आचम्य प्राणायामं कृत्वा अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गुण विशेष विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री सवितृ सूर्य नारायण प्रीत्यर्थञ्च द्वादश नमस्काराख्यं कर्म करिष्ये।

आचम्य प्राणायामं कृत्वा अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गुण विशेष विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री सवितृ सूर्य नारायण प्रीत्यर्थञ्च द्वादश नमस्काराख्यं कर्म करिष्ये।

आचम्य प्राणायामं कृत्वा अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गुण विशेष विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री सवितृ सूर्य नारायण प्रीत्यर्थं च द्वादश नमस्काराख्यं कर्म करिष्ये।

आचम्य प्राणायामं कृत्वा अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गुणविशेष विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुतिस्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री सवित्रु सूर्य नारायण प्रीत्यर्थं च द्वादश नमस्काराख्यं कर्म करिष्ये।

आचम्य प्राणायामं कृत्वा अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गुण विशेष विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री सवितृ सूर्य नारायण प्रीत्यर्थं च द्वादश नमस्काराख्यं कर्म करिष्ये।

आचम्य प्राणायामं कृत्वा अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गुण विशेष विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री सवितृ सूर्य नारायण प्रीत्यर्थञ्च द्वादश नमस्काराख्यं कर्म करिष्ये।

आचम्य प्राणायामं कृत्वा अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गुण विशेष विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री सवितृ सूर्य नारायण प्रीत्यर्थं च द्वादश नमस्काराख्यं कर्म करिष्ये।